याज्ञाकरम है सर्वबलधारियु अनाति अनंतु दिव्यनी मोक्षांपन मातावन खाने मारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थान अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटी देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसु मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहासे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।